उकावार निकी बनाहू सिड़ी सिड़ी की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकामी था ही इदा सिड़ी सिड़ी की इथोनी नी दियोगा की इदा सिड़ी सिड़ी की हा नजा जा खाने नी दियोगा की जाबुनी हा नजा जा उखाने।